जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहया सो दार राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो दर तेरा केहा सो कर केहा जित वह सर्व संभाले वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावन हारे केते तेरे राग परी स्यों कही है केते तेरे गावन हारे गावन तुदना पवन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदना चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बीचारे गावन तुदना ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवते आदर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सति संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीश्वर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच्छ पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले

रहाओ। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया। तुद विन सिद्धि किनै न पाईया, कर्म मिलै नाहीं ठाकर हाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देहे तिसै क्या चारा, नानक सच सुवारण हारा। आसा महला पहला।

सतगुरु शरण संगत नहीं आए। त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुरु संगत पाई। तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सतसंगत जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा। काहे रे मन चित वह उत्तम जा आहर हर जियो परया। शैल पत्थर मह जंतु पाए ताका रिजक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिल

कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया सब निदान। दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए।

सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगमा पारा, सब त्याव है सब त्याव है तुझ जी, हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्याव हो संतोह जी, सब दुख विसारण हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी। हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक भेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा।

हर हर रूप समासी से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुझ जी हर अनिक अनेक अनंता।

तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा।

की आत्मासा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूतियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल

गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंच

घट घट के पट पट की जानै, जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते

काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कहो से नाम हर कह लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कारु अनहद वाजे अन

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।

एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जीव तिस पावे तिमें चलावे जीव होवे फुरमान ओ वेखे ओ ना नदर ना

रैण गवाई सोई के दिवस गवाया खाई, हीरे जैसा जन्म है कोड़ी बदले जाए, नाम ना जाने राम का मोड़ी फिर पाछे पछताए रे। ए जीव ऐसी अरदास मालक दे चरणा विच करिया कर, आई प्रभु शरणागति कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन मस्त नानक होत निहार, जिस वखर को लैन तो आया राम नाम संतन कर पाया, सच वापार करो हो आपारी दरगह निबह खेप तुम्हारी, मैं बनजारन राम के तेरा नाम अखर वापार जी, ए मालक जी रहमत बख्शिश कर, ए सच दा वापार करा, एहो वापार विरला वापार है नानक ताके सद बलार। तन गुरु नानक देव जी महाराज की दरसा रहे की पाई, जिन्होंने ये वापार किया मैं उन्हों तो बलहारी जाता बलहारी जाता, कि कंचन स्यो पाइयो नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल, मन बीचे सतगुर कह पास दिस्क सेव के कारज रास, मन बेचना पैना मन अर्पण करना पैरा, ताई भग जी करण की पाई तन मन अर्पो पूज चराओ गुर प्रसाद निरंजन पाओ, केवल ती केवल मन दे नाल विचार है। कई बारी मनुख सत्संग दिया कड़िया विच बैठा हुंदा पर जिहड़ा मन है वह भज्जिया फिरदा है, क्यों? ताई सतगुरां ने कह दिता कि भाई ए मन चंचला चतराई किने ना पाया, मन ना रहे कैसे मिलो प्यारी, जे मन दी सत्संग दिया कड़िया हो जान सतगुर पाछे कहने कि ए प्रवान है गाविए सुनिया मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर लिया।

विछड़ छोटा खावे सो सिख सखा बंदप है पाई जे गुर के भाणे विच आवे अपने भाणे जो चले पाई विछड़ चोटा खावे बिन सतगुर सुख कदे न पावे पाई फिर पछोतावे हर के दा सुहेले पाई जन्म जन्म के किलविक दुख काटे।

मर जब मैं वारो वारा हाँ मेरा जग पलक रहा पाई कोई न किसी केरा गुरमुख।

0: सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम
1: जना के मन विश्राम रहाउ।
0: प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै,
1: कै सिमरन दुख जम न सै।
0: प्रभ कै सिमरन काल पर हरै,
1: प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै।
0: प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै,
1: प्रभ कै सिमरन अंधन जागै।
0: प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै,
1: प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै।
0: प्रभ का सिमरन साध कै संग,
1: सर्व निदान नानक रंग।
0: प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध,
1: प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत्व।
0: प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा,
1: प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा।

0: प्रभु के सिमरन कृष्ण भुजय
1: सबके सिमरन सबके सुजय
0: प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा
1: सिमरन पूर्ण आसा
0: प्रभु के सिमरन।

0: संत दियारा
1: मंत्रा को ना से अनु
0: हर का नाम से लाल
1: जय महाप्याम तप्त भव काम
0: हर के नाम की सुमुख पर छाम
1: यहाँ त्रिका मंत्र जय कर
0: नानक हर हर अमृत पर
1: भक्त जना की वर्तन नाम
0: संत जना के मन विश्राम
1: हर का नाम दास की ओट
0: हर के नाम उतरे जन को
1: हर जैसा

0: साजना की सरनी पर नानक ताके बल बल जासा
1: सगल पुरख में पुरख प्रधान
0: सात संग जा का मिटे अभिमान।

0: सबल कटा के अंतर जामी
1: अपनी गत मित जन हो आपे
0: आपन संगा प्रवराते
1: उस्तत दमते होए
0: नानक अवर न जान सकुए
1: सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म
0: हर को नाम जप निर्मल कर्म
1: क्रिया मह उत्तम गिरया
0: सा संग दुर्मत मल हिरया
1: उत्तम मह उत्तम भला
0: हर का नाम जप हो जी सदा
1: सगल वाणी मह अमृत वाणी
0: हर को जस सुन रसन बखानी
1: सगल तानते ओ तम
0: नानक जी कट वस

0: दूध
1: जो गुण भोजन
0: बिरद भया ऊपर साक्षैन
1: मुख प्याओ बैठ को दैन
0: एहो निर्गुण गुण कछु न बुझे
1: बख्श लियो तै नानक सीजे
0: जे प्रसाद धार ऊपर सुख बस है जे प्रसाद पीवै शीतल जला जे प्रसाद भोग

0: छोड़ जाए तिसका श्रम करे,
1: संग जाए तिस पर हरे,
0: चिंतन लेप उतारे तो हे, अंध कूप में पतत बिकराल,
1: अहंकार ले प्रभु ध्याल,
0: करतूत पशु की मांस जात,
1: लोक बचारा करे धनराद,
0: बाहर भेखंतर मल माया,
1: शिक्षना कश करे शिपाया,
0: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान।

0: अष्टत्वदी
1: जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे
0: तिस ठाकुर को रख मन माहे
1: जय प्रसाद सुगंध रतन लावे
0: तिसको सिमरत परम गत पावे
1: जय प्रसाद बसे सुख मंदर
0: तिसह त्याय सदा मन अंदर
1: जय प्रसाद गृह सन सुख वसना
0: आठ पहर सिमर हो तिस रसना
1: जय प्रसाद रंग रस भोग
0: नानक सदा त्याय त्यावन जोग
1: जय प्रसाद पाठ बटंबर हरावे
0: तिसह त्याग कतवर लुभावे
1: जय प्रसाद सुख से सोई जय
0: मन आठ पहर का जस गा विजय
1: सबको मान्य
0: मुखता को जस रसन बकाने
1: धर्म
0: मानो सदा त्याय केवल पार ब्रह्म
1: मान भाव
0: नानक पद से ती घर जाव है
1: आरोप कंचन देही
0: राम स्नेही
1: प्रसाद तेरा ओला रहत
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत
1: प्रसाद तेरे सगल छिंद्र ठाके
0: मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके
1: प्रसाद तुझको न पहुँचे
0: मन सा सिमर हो प्रभु ऊचे
1: प्रसाद पाई दुर्लभ दे
0: नानक ताकी भगत करे
1: प्रसाद आपूखन पहरी जय
0: मन ते सिमरत क्यों वालस की जय
1: प्रसाद अश्व हस्त असवारी
0: मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी
1: प्रसाद बाग मिल कतना
0: राख प्रोय प्रभु अपने मना
1: जिन तेरी मन बंत बनाई
0: उठत बैठत सत्य सहते आई
1: सहते आए जो एक अलख है
0: इहां उहां नानक तेरी रखे
1: प्रसाद करे बुन बोदान
0: मन आठ पैर पर तिसका ध्यान
1: प्रसाद तू आचार व्यवहारी
0: तिस प्रभु को साथ साथ चितारी
1: प्रसाद तेरा सुंदर रूप
0: सो प्रभु सिमरहु सदा अनूप।

0: जय प्रसाद सुख सहज जय बसना,
1: जय प्रसाद हस्त कर चल,
0: जय प्रसाद संपूर्ण फल है,
1: जय प्रसाद परम गत पाव है,
0: जय प्रसाद सुख सहज समाव है,
1: ऐसा प्रभ त्याग अवरगत लागो हो,
0: गुर प्रसाद नानक मन जागो हो,
1: जय प्रसाद तू प्रगट संसार,
0: जिस प्रभ को मूल न मनो विसार,
1: जय प्रसाद तेरा प्रताप,
0: रे मन मूढ़ तुता को जा।

0: अस्पति साध के संग मुखू जलहूत
1: साध संग मल सगली खोत
0: साध के संग मिटे अभिमान
1: साध के संग प्रटे जो ज्ञान
0: साध के संग बुझे प्रभ नीरा
1: साध संग सवोत नवेरा
0: साध के संग पाए नाम रतन
1: साध के संग एक ऊपर जतन
0: साध की महिमा बरने कौन प्राणी
1: नानक साध की शोभा ब्रह्मा समानी
0: साध के संग अगोचर मिले
1: साध के संग सदा प्रफुल
0: साध के संग आवह बस पंचा
1: साध संग मंत्र पंचा
0: साध संग हो सब की रेन
1: साध के संग मनोर बैन
0: साध के संग न कतु हूं तावे
1: साध संग सद मन पावे
0: साध के संग माया ते

0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र,
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रावे आप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये,
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए,
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे मेसर,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है,
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन मान,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद,
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कत्या न जाए दाखर,
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर,
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बकाने,
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने,
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि करता,
0: ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता,
1: ब्रह्म ज्ञानी मुख जुग जी का दाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता।

0: निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है। नानक अपर सगुन निस्तार है अष्टपदी। मन में प्रीत निरंजन दर्श
1: रूप न पेक्षा नेत्र
0: साधित
1: करण न सुन काहू की निंदा
0: सब ते जाने आपस को मंदा
1: दूर पर साध विख्या पर हर
0: मन की वासना मन ते टरे
1: इंद्री जित पंच दोख ते रहत
0: नानक कोट मध्य को ऐसा परस
1: सुनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: कृष्ण की माया ते हुए पिन
1: कर्म करत हो वह नहीं कर्म
0: किस वैष्णव का निर्मल धर्म
1: काहू बल की इच्छा नहीं बचा
0: केवल भगत कीर्तन संग राचा
1: मन तन अंतर सब गोपाल
0: सब ऊपर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अवरह नाम जपावे
0: नानक वैष्णव परम गत पावे
1: सगलती भगवंत भक्त का रंग
0: सगल त्याग दुष्ट का संग
1: मन ते विनत सगला भरम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: संग पाप मल होवे
0: जिस भगवती की मत उत्तम होवे
1: की टहल करे नित नीत
0: मन तन अर्पय विष्णु प्रीत
1: के चरण हृदय सावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडित जो मन पर बोध
0: राम नामा तुम्हें शुद्ध।

0: ज्ञान कुश पंडित को सदा आदेश,
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान,
0: चौवरना में जपे को नाम,
1: जो जो जपे जिस की गत होए,
0: सासंग पावे जन कोए,
1: कर कृपा अंतर और तार,
0: पास प्रेत मुग्ध पाथर को तार,
1: सर्व रोग का औखद नाम,
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाम,
1: बाहु जोगद के तेना पाई है धर्म,
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म,
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास,
0: जिसका नाम सत राम दास,
1: आत्म राम जिस
0: दास दसंतन पाए तिन पाया।

0: जीवन मुक्त सो कहावे,
1: ऐसा हर तैसा उसोग,
0: सदा अनंत तै नहीं वियोग,
1: ऐसा स्वर्ण तैसी उसमाटी,
0: ऐसा अमृत तैसी बिखाटी,
1: ऐसा मान तैसा अवमान,
0: ऐसा रंग तैसा राजान,
1: जो बताए साई जुगत,
0: नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त,
1: और ब्रह्म के सगले ठाओ,
0: जित जित घर राखे तैसा तिन नाओ,
1: आपे कर्म करा बंजोग,
0: प्रभा वैसो ही फुन होग,
1: असरे वाप होय अनतरंग,
0: लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग,
1: जैसी मत दे तैसा प्रगास,
0: पार ब्रह्म करता अविनाश।

0: प्रभु रचि बहुविधयनक प्रकार
1: राष्ट्रपति
0: कई कोट होए पुजारी
1: कई कोट आचार विहारी
0: कई कोट भए तीर्थवासी
1: कई कोट मन भरमे उदासी
0: कई कोट वेद के स्रोते
1: कई कोट विसरोते
0: कई कोट आत्म ध्यान धार है
1: कई कोट कौ कौ विचारे
0: कई कोट नवतन नाम त्याव है
1: नानक करते कांत न पावे
0: कई कोट भए अभिमानी
1: कई कोट अंध ज्ञानी
0: कई कोट कृपन कठोर
1: कई कोट पिग आत्म निखोर
0: कई कोट पर दर्भ कौ ही रहे
1: कई कोट पर दुख न करे
0: कई कोट माया श्रम माहे
1: कई कोट पर देश पर माहे
0: जित जित लाभ तित तित लगना
1: नानक करते की जाने करता रचना
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी
1: कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प पाए
1: कई कोट पात्र बिरख न बजाए
0: कई कोट पवन पानी बैसंतर
1: कई कोट देश भू मंडल
0: कई कोट शशियर सूर नखियतर
1: कई कोट देव दानव इंद्र छत्र
0: सगल समग्री अपने सूत तार
1: नानक जिस पावे तिस निस्तारे
0: कई कोट राजस्थान सातक
1: कई कोट वेद प्राण सिमरतर शास्त्र
0: कई कोट कीर्तन समुद्र
1: कई कोट नाना प्रकार जंत
0: कई कोट किए चिर जीवे
1: कई कोट गिरी मेर स्वंति वे
0: कई कोट जकि नर पिशाच
1: कई कोट भूत प्रेत शुक्र मृगाच
0: सब ते नीर सब हूं ते दूर
1: नानक उपलब्ध त्रया भरपूर
0: कई कोट पाताल के वासी
1: कई कोट नरक स्वर्ग निवासी
0: कई कोट जन्म है जीव है मर है
1: कई कोट बोजोनी फिर
0: कई कोट बैठत ही खाहे
1: कई कोट काले थक पाहे
0: कई कोट किए तनवंत
1: कई कोट माया में जिंत
0: जय जय पाणा तय तय राखे
1: नानक सब कुछ प्रके हाथे
0: कई कोट भय बैरागी
1: नाम नाम संग तिन लागी
0: कई कोट प्रभु को खोजन।

0: नानक दृष्टि अवर न आवे,
1: कौन मानुख से क्या हे आवे,
0: जो तिस पावे सोई करावे,
1: इसके हाथ हुए तो सब कुछले,
0: जो तिस पावे सोई करे,
1: अनजानत बिख्या मैं रचे,
0: ये जानते अपना बचे,
1: परमे भूला दर्द सावे,
0: निमक माही चार कुंट फिर आवे,
1: हर कृपा जैसे अपनी भगत दे,
0: नानक तेजन नाम मिले,
1: इनमें नीच कीट को राज,
0: पार ब्रह्म ग्रीव निवाज,
1: जाका दृष्ट कछु न आवे,
0: तत्काल दा दिस प्रगटावे,
1: जाको अपनी करे बखशीस,
0: काका लिखन गने जगदीश,
1: जियो पिंड सब तेस की रास,
0: कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास।

0: ज्योतिष पावै सोई फुन खियो,
1: कबहु ऊंच नीच में बसे,
0: कबहु सोग हरख रंग हसे,
1: कबहु नंचिंद व्यवहार,
0: कबहु ऊब आकाश पयाल,
1: कबहु बेचा ब्रह्म विचार,
0: नानक आप मिला बनहार,
1: कबहु नित करे वा भांत,
0: कबहु सोए रहे दिन रात,
1: कबहु महाक्रोध विकराल,
0: कबहु सर्व की हो तरवाल,
1: कबहु बड़ राजा,
0: कबहु पेखारी नीच का साजा,
1: कबहु अपकीर्त में आवे,
0: कबहु भला भला कहावे,
1: प्रभु राखे ते वीर रहे,
0: गुर प्रसाद नानक सच कहे,
1: कबहु

0: लिया सुनाई
1: आप उपदेश समझाए
0: आपकी रचिया सबके साथ
1: आपकी अपन विस्तार
0: सब कछ पुस्काव करने हार
1: शांत
0: नंतर एक को सोए
1: शांत नंतर एक
0: अपनी चलत आप करने हार कौतुक करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नान कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद किने वख्यानी
1: सच सच सच सब कीना
0: ओट मध्य किने बिरले चीना
1: पला पला पला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कट कट सुनी श्रवण बख्यानी पवित्र पवित्र

0: इसका नाम रख कंठ पर होए।
1: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए।
2: नानक बिगन न लागे कोए।
1: पुस्तत मन में करन अंकार।
0: कर्म मन मेरे सत व्यवहार।
1: निर्मल रसनामृत पियो।
0: सदा सुहेला कर ले।
1: नैनो भेख ठाकुर का रंग।
0: चरण चलो मार गोविंद।
1: साथ संग बिन से सब संग। चरण चलो मार गोविंद।
0: मिटे पाप जपिए हर बिंद।
1: कर हर कर्म सर्वण हर कथा।
0: हर दरगह नानक जल मथा।
1: बड़ पागी तेजन जग माहे।
0: सदा सदा हर के गुण गाए।
1: राम नाम जो करे विचार।
0: चेतन वंत गणी संसार।
1: मन तन मुख बोले हर मुखे।
0: सदा सदा जानो के सुखी।
1: एको एक एक पहचाने।
0: एक पुत्र की ओसो जी जाने।
1: नाम संग जिसका मन मानिया।
0: नानक तिन्ह निरंजन जानिया।
1: प्रसाद अपने नब सुजे।
0: साध
1: संग हर हर जस कहत।
0: गर्भ रोग त्यो हर जन रहत।
1: अंदन कीर्तन केवल वख्यान।
0: कृष्ण मैं सोई निर्वाण।
1: एक उपज जन की आसा।
0: जिसकी कटिया जम की फसा।
1: सार्वम की जिस मन भूख।

0: प्रके सेवक सगल उदाहरण
1: प्रके सेवक दुख विसारण
0: प्रके सेवक वापे मिले कृपाल
1: गुरु का शब्द जप भय निहाल
0: उनकी सेवा सोई लागे
1: जिसनु कृपा करहे बड़ पावे
0: नाम जपत पावे विश्राम
1: नानक तिन पुरु को तुम कर मान
0: जो कुछ करे सो प्रभु के रंग
1: सदा सदा बसै हर संग
0: सह सोए होवे सोए
1: करने हार पछाण सोए
0: प्रका किया जन्म लगाना
1: जैसा सत्य सा दृष्टाना
0: देव जय तो समाये समाये
1: वही सुख।

0: वस्त आई तेरा संग
1: लप्त रहो रस लोभी पतंग
0: राम नाम जप हृदय माहे
1: नानक पछेती कर जाहे
0: जिस वखर को लैन तू आया
1: राम नाम संतन कर पाया।

0: नाना विदकर बनत बनाई
1: अपनी कीमत आपे पाए
0: सब कट तिसके सब तिसके ठाओ
1: जब जब जीवे नानक करनाओ
0: नाम के तारे सगले जंत
1: नाम के तारे खंड ब्रह्मांड
0: नाम के तारे सिमृत वेद पुराण
1: नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान
0: नाम के तारे आकाश पाताल
1: नाम के तारे सगलाकार
0: नाम के तारे पुरिया सब पवन
1: नाम के समुद्र संसार
0: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
1: नानक चौथे पद में सो जन जत पाए
0: रूप सत जा का सत स्थान।

0: सत
1: सत करनी निर्मल निर्मली
0: जिसे बजाए तिसे सब पले
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई
0: विश्वास सत नानक गुरु ते पाई
1: सत वचन साधु उपदेश
2: सत जन जाके हृदय प्रवेश
1: सत निर्त बुझे

0: विष मन विषम भय विषमाद
1: प्रभ
0: कै रंग राजन रहे
1: हुए
0: दाते दुख काट नहार
1: संग तरह संसार
0: जन का सेवक सो वट भागी।

0: सच अष्टपदी
1: चरण सत सतपर्श नहार
0: पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेखण हार
0: नाम सत सत्यावन हार
1: आप सत सत सतारी
0: आपे गुण आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रवक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: पूजन हार को सत्सव होए
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मान्या
0: करण करावन तिन मूल पछाने
1: जाके हृदय विश्वास प्रभ आया
0: सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया
1: ते निरपोवे विसाना
0: जिस ते उपजिया तिस माहे समान
1: मस्त

0: अष्टपदी।
1: संत जना मिल करो विचार,
0: एक सिमर नाम आधार,
1: अवर उपाव सब मीत विसारो,
0: चरण कमल रिद्ध में और

0: जिस धन को चार कुंट उठतावे
1: सो धन हर सेवा ते पावह
0: जिस सुख को नित बाच है मीत
1: सो सुख साधु संग प्रीत
0: सोभा को।

0: क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया।
1: सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया।
0: सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै।
1: गुर प्रसाद को बिरला चौलख।
0: सो क्यों बिसरै जे बिकते काटै।
1: जन्म जन्म का टूटा गंड।
0: गुर पूरै तते है बुझाया।
1: प्रभ अपना नानक जन त्याया।
0: साजन संत करो एहो काम।
1: आम त्याग जपहो हर नाम।
0: सिमर सिमर सिमर सुख पावो।
1: आप जपहो अवरा नाम जपावो।
0: भक्त भाई तरिय संसार।
1: बिन भक्ति तान होसी सार।
0: गर्व कल्याण सुख निधना।

0: ने आसाना
1: कह जन्म मरण को कहा विनाशन
0: जब पूरन करता प्रभ सोए
1: तब जम की त्रास कहो किस हुए
0: जब अवगात अगोचर प्रभ एक
1: चित्र गुप्त किस

0: आप मित्र सुत पाई।
1: यह सर्व कला आप है पर बेन
0: वेद कतेव कहा कोचीन।
1: जब अपने आप और तार
0: तो सगन अब सगन कहा विचार है।
1: यह अपने ऊच अपने आप नेरा
0: कौन ठाकुर कौन कही है चेरा।
1: बिस्मन बिस्म है बिस्माद
0: नानक अपनी गत जानो आप।
1: जय अशाल अशेद अभेद समाया
0: किसे व्यापत।

0: पदी।
1: आप कथे आप सुनने हार
0: आप बसार
1: पावे सृष्ट उपाय
0: आपने भाणे समाये
1: तुम ते पिन नहीं किचोए
0: आपन सुख सब जगत परोए
1: जाको प्रभ जीवा बुझाए
0: सच नाम सोई जान पाए
1: सम दर्श।

0: जाने तिसदा सुख हुए।
1: आप मिलाए लय प्रभ सोए।
0: धनवंत कुलवंत पुतवंत
1: जीवन मुक्त जस दिदा भगवंत।
0: धन धन धन जन आया
1: जस पर साध सब

0: असंख पूजा असंख तापता
1: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे अदास
0: असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सते।

0: जीत फिरे स्वदेश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे
1: गुंजत गोर गजान के सुंदर है सती राज हजारे
0: भूत पवेख भगवान के भूपत गौन गन नहीं जात बेचारे
1: सरी पद सरी भगवान भजे बहन अंत को अंत।

0: जति जत तार सब सुविचार हजार क देख
1: श्री भगवान भजे बन भूपत एक रती बनो एक न लेखा
0: खुद से बाह दुवंत दवाह ससाज सुनाह दुर्ज्ञान।

0: निंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे।
1: जीव जित जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे।
0: प्रतापन बाढ़ जात तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे।
1: साल समूह प्रसन्न फिर जाग सतर सब है अब लोग चपेंगे।
0: मानव इंद्र गजेंद्र नराध पजोंत लोग को राज करेंगे।
1: कोट स्नान गजाद कदान अनेक स्वंबर साज परेंगे।
0: ब्रह्म महेश्वर विष्णु सच्चे भगवंत फसे जम्बा।

0: हो सहाई
1: दोष दोख से लेहो बचाई
0: करी हम पर जग माता
1: ग्रंथ करा पूर्ण सब रास्ता
0: सकल दे को हरता
1: दोष दोख अनुकोषा।

0: ते अगन में आहर पहुंचावे
1: उस नौ के हो ना सके जिस नौ अपनी लिब लावे
0: अपनी लिब आपे लाए गुरमुख सदा संभालिया
1: कहा नानक वटदाता सो क्यों मनो विसारिया
0: जैसी अगन उधर में तैसी बाहर माया
1: माया अगन सब एको जेही करता खेल
0: रचाया तान जमया परिवार भला पाया
1: लिब छोड़ के लगे त्रिसना माया अमर वरताया।

हर शोभा चिंता लाहे हमारी मांगो राम ते इक दान सगल मनोरथ पूरण होवै

सुना अमृत पियो सदा सोहेला कर लजियो ननो पेख ठाकुर का रंग साध संग बिन से सब संग चरण चलो मार्ग गोविंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म सर्वन हर कथा हर दर गए नानक पूजल मथा।

बिन शब्द सब जग बौराना, बिरथा जन्म गवाया। अमृत को शब्द है नानक गुरमुख पाया। पौड़ी सो हर पुरख अवम है, कहो कित बिद पई है, तिस रूप नरेक अदृश्य, कह जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अवम, क्या कह गुण गई है, जिसे आप बुझाए आप, सोहर मार्ग पई।

सेवा पाइए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। परम सम्मान सत्कार योग परम पूज्य साध संगत जी, आप जी वडभागी हो अमृत वेले तो सजे शाहे शहनशाह शब्द गुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पाक पवित्र हजूरी विच हाजरियां भरदियां नितनेम दियां बाणियां दा पाठ श्री सुखमनी साहिब दी बाणी दा पाठ संपूर्ण श्री आसा दीवार दा शब्द कीर्तन आप जी ने सरवन कीता, उपरंत अरदास बेनती हुक्म आपने सरवन कीता। अज अमृत वेले तख ते प्रकाशमान होन वक्त गुरुदेव ने जो पावन हुक्म दी बख्शीश कीती दा मूल पाठ आप जी ने सरवन कीता। ए पाक बचन जग तारक पिता धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह दे उचारण कीते होए सोरठ राग दी वार दे विच मुबारक गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 643 ते पाक बचन 44 ते दर्ज हन। आओ कुछ समय वास्ते इन पावन पवित्र बचना दी सारे मिलके विचार करिए। सतगुरु शब्द दे आरंभ विच सलोक उचारण कर दे माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया। माया तो इत्थे मुराद केवल धन दौलत ही नहीं है। हुणे आपने स्टेज तो सरवन कीता जिन्नी भी संसार दी ममता है ना, हुण परिवार नाल साडी ममता है, मोह है, प्यार है, असल विच ए भी ते माया ही। एक सवैया उचारण सतगुरां दी सिफत करदिआं भट्ट ने कीता है, हम अवगुण भरे एक गुण नाहीं, अमृत छाड बिखै बिख खाए, माया मोह भरम भै भूले। पै पै के माया मोह परम पै भूले, सुतदारा सियों ये भी माया ही है। ममता ते माया दो अलग अलग नहीं हैं। कई बारी देखण विच लकब अलग अलग, सुनण विच अलग अलग सुनाई देंदे, पर ममता दा अर्थ विद्वाना ने कीता है माया दी अपनत। अपनत दा मतलब हुंदा ए शै मेरी है, ए वस्तु मेरी है। एक अदेव विद्वान लिखदा है कि मेरी ते तेरी तो ही दुनिया दे सारे झगड़े जन्म लें। जद किसे वस्तु नू दावा कर दिया कहांगे मेरी है, फिर भी ते कहांगे ना ए तेरी है ते ए मेरी है। दुनिया भर दा कलेश ते हर झगड़ा जन्म लैंदा मनुख दी मेर ते तेर तों। अज दे हुक्म विच गुरु
अमरदास महाराज कृपा कर दे माया ममता माया दी अपनत जो मन नू मोह लैण वाली मोहनी है ऐसी मोहनी है ऐसी अपनत दे विचे फसाउंदी है जिन विण दंता जग खाया। इहदे दंद है नहीं बिना दंदा तो ही गुरुदेव बचन कर दे ने सारे जगत नू खा लिया। समूल चाई जे कहिए निगल लिया ते कोई अत कथनी नहीं होएगी। समुचे संसार नू जग नू जगत नू इन्ने निगल लिया खा लिया। जदे जगत दी गल कीती हुण जग दे विच सारे ही आ जांदे ने। जगत दी संसार दी दुनिया दी गल करांगे फिर सारे ही आ गए। गुरसिखां बेनती कीती गुरुदेव ऐ जिहड़ी जिंदगी विच अपनत है माया दी की इन्हें सारे संसार नू निगल लिया कोई बचे है इहदे प्रभाव तो कोई बच पाया के नहीं। फिर सतगुरु दूजा बचन कीता भाई गुरसिखो मन मुख खादे इन्हें अपनत ने किनों खादा मन मुखां नूं। मैं एक दिन बेनती कीती सी मन मुख दी परिभाषा जिहड़ी है विद्वान लोग इदा दसदे ने कि मन पौंदे कर्म करने मन पौंदा खाना ते मन पौंदे कम करन वाले बंदे नू ही मन मुख किया एहो जे करनी वाले जड़े मनुख मन मुख हन मन दे मुरीद इस माया दी अपनत ने उना सबना नू समूल चे खा लिया निगल गई। गुरुदेव कोई बचिया साहब कहंदे हां बचे गुरमुख उबरे। गुरमुख दा अर्थ की करिए जेड़े गुरु दी शरण पे जेड़े गुरु दी शरण आ गए। गुरु दी शरण पे के गुरु वाले जेड़े गुरमुख बन गए ओ एदे अपनत दे प्रभाव तो उबरे। उबरे दा मतलब है बच गए ओ बचे। फिर वो गुरमुखां दी अगे फलसफा भी दसिया कि गुरमुख है कौन है जिन्नी सच नाम चित लाया। गुरमुख दरअसल वो है जिन्हें गुरु दी शरण पै के सदा थिर रहन वाले पार ब्रह्म परमेश्वर दे नाम दे विच अपना चित जोड़ लिया चित ला लिया। जिदा चित पार ब्रह्म परमेश्वर दे नाम विच लग गया। एक बारी मैं फिर दोहरा देवा गुरमुख दी परिभाषा की है। गुरमुख प्यारे ओ हन जेड़े गुरु दी शरण पैंदे नहीं ते गुरु तुट के फिर उना गुरमुख प्यारियां दे सिर ते अपना हाथ रखदा ते पसीज के उना नू परमेश्वर दा नाम देंदा ते नाम दे विचो चित जदों जोड़ दे ने फिर ए दुनिया दी माया दी अपनत तो ओ उबर दे ने बच जांदे। श्लोक अंदर तीजा बचन बिन नावै जग कमला फिरै गुरमुख नदरी आया। हुण जिहड़ा गुरु दी शरण आ गया
ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕੀ ਨਦਰੀ ਆਇਆ? ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕੀ ਨਦਰੀ ਆਇਆ? ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜਗ ਕਮਲਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਤਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੱਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ, ਝੱਲੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਝੱਲਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਾਤਾ ਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਗਲ ਤੇ ਝੱਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ, ਦੀਵਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਦੀਵਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਸੀਹਤ ਨਾਮਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਨਸੀਹਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਦੀਵਾਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਵਾਨਾ? ਕਹੇ ਮੁਲਕ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਣੱਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਮੇਰੀ, ਜ਼ਗੀਰ ਤੇ ਮਿਲਕ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਦੀਵਾਨਾ ਕਹੇ ਮੁਲਕ ਮੇਰਾ, ਆਈ ਮੌਤ ਸਰ ਪਰ। ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਚ ਵੱਜਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਉੱਠਿਆ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਉੱਠਿਆ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਨੱਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਈ ਮੌਤ ਸਰ ਪਰ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਵਜਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਵਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ। ਤੇਰਾ ਤੁਝਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਤੁਝਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਲਾਗੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਬਚਦਾ ਮੇਰਾ? ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਕੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ? ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੀਵਾਨੀ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੈ, ਝੱਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਬਾਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ
इस बावरेपन का जिक्र किया। बाबा कबीर जी कहते लिह लिह करत फिर सब लोग, फिर सारी दुनिया की गल लिह लिह। असी पंजाबी विच लकब एदां वरतदे आ प्यारियो, बजुर्गों कोलों कई वारी सुने कि बच्चा की लहू लहू करदा पिया, पर इत्थे लफज है लिओ लिओ, भाव जो मिलता है लै लो। पर गुरमत सानू यह सिखा दी जिदे उत्ते तेरा हक नहीं है उनू प्राप्त करने लई तू यतनशील ना होवीं। जिंदगी विच ए दृढ़ कर लै कि जिस वस्तु ते तेरा हक नहीं है उनू प्राप्त करन लई यतन ना करी। बड़े सुंदर बचन ने जन्म साखी विच दास ने पढ़े, अरब दे विच विचरदिया एक नगर दे विचों बाबा मर्दाना जी नू किसे ने एक दमड़ा दे दिता, एक दमड़ा, तो उन्होंने अपनी जेब विच रख लिया। चलदिया चलदिया नगर तो विदा होके जदों छले ना उजाड़ दे विच पहुंचे ते मर्दाना हथ जोड़ के कहन लगा, भाई सब कहंदे बाबा पता नहीं आज कुछ डर लग रही है, मैनू ना आज भय खौफ डर लग रही है। ते गुरु बाबा मुस्कुराए ते हस के कहन लगे मर्दाने आ, जिस वस्तु दा खौफ होवे ना वो वस्तु नू सुट देना चाहिए, छड़ देना चाहिए। यही जीवन दा असल जेड़ा चज है, जिस वस्तु करके जिंदगी विच डर है उस वस्तु नू छड़ देना त्याग देना ही अच्छी गल है। साहब जान दे के मर्दाने दे डर दा कारण की है, ते बाबा मर्दाना जी भी बड़े दानिश्वर होए ने, ठीक है विद्वाना ने उन्हां नू भुखे ते प्यासे ही बयान कीता है, लेकिन है ब्रह्म ज्ञानी सन, गुरु बाबे दी बहुत संगत कीती उन्होंने, गुरु नानक साहब दे नाल उन्हां बहुत कीर्तन कीता है। ते गुरु के प्यारेओ मर्दाने ने ज्यों ही ओ दमड़ा जेब दे विच्चों कढ़ के सुटिया ते भय डर खत्म हो गया। अज गुरुदेव विचार अधीन अज दे हुकम विच बचन कर दे

बिन पाग सत्संग न लभे, बिन संगत मैल परिजे जीयो। गुरु दे चरण विच अरदास बेनती करिए मालिक, आई प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल। एक अकर हर मन बस्त नानक होत, निहाल ऐसी बख्शिश हो जाए। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए। एक कड़िया जड़िया हन बड़िया ही जीवन दे विच कीमतियां हन, ताई सतगुरां ने कह दिता कि पाई बोलो जस जिह बा दिन रात प्रभ अपने जन कीनी दात। फिर हमारा ठाकुर सब ते ऊंचा रहन दिनस तिस गाओ रे। अगले शब्द केड़े समय नो बलहार जा रहे ने, ओ बेला को हो बल जाओ जित मेरा मन जपै हरनाओ। असली तन जिहड़ा है जीव दा यही तन है जिहड़ियां सत्संग दियां कड़ियां प्राप्त हो रही हैं।

पावन पंक्तियां अरदास भी बन जाए और किसी नू नहीं अपने आप नू सुनाइए। ओए मना आजा जुड़िए महाराज दे नाम नाल, लै लाहा कर जाए हिरदे रूपी घर विच इन्ना लाहा लै जा, इन्ना लाहा लै जा कि असल कर जाना सौखा बन जाए। इहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सोहेगा। जे मन दा चैन लेना है ना, जे जिंदगी न्यूट्रल करनी है, जे जिंदगी एक रस करनी है, भज दौड़ तो बंदा बच नहीं सकता, पर महाराज कहंदे ने एक सौखा मार्ग है। नामे कहे त्रिलोचना मुखते राम समाल, हाथ पाऊं कर काम सब। कहंदे ने सौखा तरीका है, कारोबार भी कर किरत बिरत भी कर, पर रसना नाल ओदा नाम ले, एकाग्रता बनी रहेगी, चैन बनया रहेगा। सच्ची प्यारे जिन्हां दा मन सुखी है ना, जिन्हां नूं थोड़ा सबर संतोख आ गया, वो दुनिया विच सब तो अमीर है। कहो सारे महाराज नूं, स्क्रीन तुहाडे सामने है, भावें देख के गाओ पर गाओ जरूर।

जुग जुग एको वेश। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। परम सम्मान सत्कार योग सत्संगत जी, आप जी वडभागी हो, हफ्तावारी दीवान दियां हाजरियां भरदियां पंथ दे प्रसिद्ध गुरु के कीर्तनी हजूरी रागी जथा भाई साहब भाई ओंकार सिंह जी दे जथे पासों रस पिना गुरबाणी शब्द कीर्तन आप जी ने सरवण कीता। उपरंत चल रही कुछ समय तो जप बाणी दी विचार दे दरमियान जो पावन पवित्र बचना दा पाठ आप जी ने सरवण कीता, ए पावन बचन धन गुरु नानक सचे पातशाह दे उच्चारण कीते जपजी साहिब दी 31वीं पौड़ी है। इस तो पिछली पौड़ी विच लोगां दी जो उथानका बनी उहदा जिक्र गुरु नानक साहिब ने कीता कि किसे समय माया ने जुगत दा व्याह कीता ते प्रसूत होई उहने 3 बेटियां नू जन्म दिता। जो लोक गाथा प्रसिद्ध है कि एक ब्रह्मा है, दूजा विष्णु है ते तीजा शिव है, फिर ए उथानका विच ए भी दसिया जांदा है कि ब्रह्मा घर बारी है, बच्चे पैदा करदा है इंसान जीवां जीव जंतु, ते जिन्हां नूं पैदा करदा ब्रह्मा उन्हां नूं विष्णु भंडार वंडदा दातां देंदा। समय नाल शिव उन्हां दा फिर संघार करदा। ये उथान का कल दी कथा विच संध्या वक्त आपने सरवण कीती। अज मेरे गुरुदेव धन गुरु नानक सचे पातशाही फलसफा बयान करे ने जिस दे विच उन्होंने निरंकार नू ही ए तिन्ने काज कम करन वाला बयान कीता। ध्यान देना, आसन लोए लोए भंडार, अखरी अर्थ आसन कहिंदे ने जी टिकाणे नूं, लोए लोए दो वरी लकब दो वरी ये लफज है। लोए दा मतलब है लोक लोकाई, जिवें असी लफज सुनदे हां लोई लोकाई लोए। हर लोक विच परमात्मा दा टिकाणा है, ते जे मैं बेनती करा आप दे चरणा विच प्यारियो हर जीव हर घट दे अंदर उहदा टिकाणा है। बल्कि धन गुरु अर्जन देव सचे पातशाह बचन करदे ने कि मेरे सतगुरु ने मैनू उपदेश दिता। इशारा है गुरु पंजवें पातशाह दा धन गुरु रामदास सचे पातशाह वल के मेरे गुरु पिता ने मैनू उचेचे ए उपदेश कीता। ऐसे ते गुरु सारे संसार नू उपदेश करदा है, पर पंजवें पातशाह बचन करदे मेरे गुरु ने सतगुरु ने मैनू की उपदेश दिता। सुनो दुनिया दे लोको,
सतगुर मोको दिया उपदेश। मोको का अर्थ ही है कि मैनू दिता उचेचे तौर पर। सतगुर मोको दिया उपदेश, यो उपदेश है कि रब किथे रहिंदा है, रब दा टिकाणा असल केड़ा है, रब दे रहण दा देश मुलक केड़ा है। ते सतगुरु बचन कर दे सतगुर मोको दिया उपदेश जियो पिंड सब हरका देश। जियो दा अर्थ है जी जिंद जड़ी साडे अंदर जान है। पिंड दा अर्थ है पिंडा शरीर। जियो पिंड जिंद ते पिंडा यही रब दे रहण दा टिकाणा जी। ते किसे एक पिंडे दी ते एक जिंद दी इत्थे गल नहीं है। रब दे प्यारियां ने भी गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे साईं बचन कर दे पुकार पुकार के रब दी सर्व व्यापकता दा जिक्र कीता और इस तरह सतगुरु सलोक उच्चारण कीता। घट घट मैं हरजू, हरजू दा मतलब है रब परमात्मा परमेश्वर वसदा। घट घट मैं हरजू बसै संतन कहयो। रब दे बंदियां ने पुकार पुकार के दुनिया नू एक गल दसी के मेरा प्रभु मेरा परविरदगार मेरा खसम मेरा साईं मेरा प्रभु हर घट हर शरीर

है खोज शब्द में राज करेगा खालसाया की रहना ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे